मैंने तो आज भी इसकी खूबसूरती मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कितना प्यारा प्यारी चीज़ है, भले एक तार का है लेकिन कितनी प्यारी चीज़ है। पहले तो आपको इसकी खूबसूरती मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आप हमारे हजरत बिलाल थे, हजरत बिलाल सैयद नबी, तो आप उनकी मंगनी के अंदर गए, तो आप सरकार ने वहाँ पे बाजा देखा गया माशाल्लाह। सरकार बोले आपके यहाँ तो बड़ा प्यारा बाजा, तो आप सरकार बोलते कि क्या आपको बजाते आता है बिलाल को बुला के? बेशक बोले बिलाल, बिलाल बोलते मेरे को बेशक बजा जाता है। तो बोले कैसे बजा दे? तो बोले दिखा। बोले तो क्या बोलता है मेरी मुझे सुना। तो फिर बाजा आपने, आप सरकार ने आप बाजा बजाया, तो फिर बाजा देखो उसकी खूबसूरती क्या बोलता है। तो पहले आपने बजाया,

जब आप सरकार का उसे मुबारक था तो फिर सीधी लोगों ने मिलकर ने भी किया कि चलो अब सीधी लोगों के साथ में उस टाइम के बहुत ऐसे ऐसे खप सब सब सीधी है सब मस्त सीधी को देख के इंसान डर जावे कि कैसा सीधी था लेकिन अभी क्या है।

0: मैंने तो आज भी इसकी खूबसूरती में आपको दिखा देता हूँ। ये कितना प्यारा प्यारी चीज है, भले एक तार का है लेकिन कितनी प्यारी चीज है। पहले तो आपको इसकी खूबसूरती में दिखा देता हूँ। ये हमारे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे,
1: आप हमारे हजरत बिलाल थे, हजरत बिलाल सैयद नबी, आप उनकी मंगनी के अंदर गए थे। तो आप सरकार ने वहाँ पे बाजा देखा गया, माशाल्लाह सरकार बोले आपके यहाँ तो बड़ा प्यारा बाजा। तो आप सरकार बोलते कि क्या आपको बजाते आता है बिलाल को बुला के? बेशक बोले बिलाल। बिलाल बोलते मेरे को बेशक बजा दे आता है। तो बोले कैसे बजा दे? तो बोले दिखा। बोले तो क्या बोलता है मेरी मुझे सुना। तो फिर बाजा आपने आप सरकार ने आप बाजा बजाया।
0: तो फिर बाजा देखो उसकी खूबसूरत क्या बोलता है। तो पहले आपने बजाया

जब आप सरकार का उसे मुबारक था तो फिर सीधी लोगों ने मिलकर ने भी किया कि चलो अब सीधी लोगों के साथ में उस टाइम पे बहुत ऐसे ऐसे खप सब सब सीधी है सब मस्त सीधी को देख के इंसान डर जावे कि कैसा सीधी था लेकिन अभी क्या अभी